0: आपने चाह।
1: ठहरो मीना, मैं खाना लेके आता हूँ, दोनों इकट्ठे खाएंगे। हाँ
0: ओके।
2: चिराग सेठ, मेरी माँ सख्त बीमार है, डॉक्टर के पास ले जाना है। गाड़ी ले जा सकता हूँ?
3: हाँ ले जाओ ले जाओ।

कोमल है, कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। हे घोषवाक्य लिहिला है संगीता अकोलकर यांनी। ऐकत रहा रेडिओ नगर 90.4 FM, आवाज तुमचा।

0: देखो कैसे ठाट से बैठा है दस बाबा, जैसे कोई राजा सिंहासन पे है बैठा। रमोला डांसिंग पार्टी पेश करती है तड़कता फड़कता जलवा।
1: अरे रमोला, इस लड़की को भी साड़ी पहनाओ।

0: घोड़ा चतुर
1: एक पैर है ना, या घोड़ा बोलना या चतुर बोलना।
0: एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, अपने ही जाल में फंसत जात, हम मरत

0: ख्यालों में जय हंगामा, कहाँ भाग रही तू मैं? या अल्लाह, काले से डर गए क्या?
1: हम काले हैं तो क्या?

0: 打的打个准备打个打的打个准备打个打浪，我打个准备打个打的个呢，打个哪个打个准备打个哪个哪个准备打个哪个哪个准备打个哪个哪个，咱们打的打，咱们打的打，咱们打的过过打的打过打的个的打的，咱们打的打，咱们打的打，咱们打的过过打的打过打的个的，咱们打的打个打的打个哪个打，打真的打准备打真的打，咱们打的打个打的打的咱们过过打真的打准备打真的打，打个等个个个咚，打的打个个个咚，打个等个个个咚。
1: पाखा नारंगी की पाका पाता चूचा रंगी चालान जैसे मस्त शराबी हालत रंग बिरंगी।

हमें माना गरीब है तंदाना, सूरज से अजीब है तंदाना, पर फिर भी नसीब है तंदाना, ये तेरे खरीब है तंदाना। हमें माना गरीब है तंदाना, सूरज से अजीब है तंदाना, पर फिर भी नसीब है तंदाना, ये तेरे खरीब है तंदाना।

काटूंगा वही, हिला को रख डालूंगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह मेरी मदद कर अल्लाह, मैं पुत्री को छोड़ूंगा नहीं मैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह।

अंदर चैन आराम राति सुबह दोपहर और शाम छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं सामने लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं देखो ना दर्द ठेस और जख्म दे जाते हैं तो आप कुछ नहीं कहते हैं।

हमारा सोच, हमारा आचरण और फल है उसको लगा हुआ दुख। इन तीनों को समाप्त करने वाला केवल फल समाप्त हो जाए, पेड़ वैसा ही रह जाए, फल वापस आ जाएंगे। पेड़ काट दिया, बीज रह गया, पेड़ वापस आ जाएगा। केवल बीज समाप्त किया और पेड़ वैसा ही रखा तो फल तो जो लगे वो खाने ही पड़ेंगे। तीनों समाप्त हो जाए, बीज भी, पेड़ भी और फल भी, ऐसा ही आगम। और उस आगम की आज की जो आराधना है वो दिल झंझोड़ने वाली आराधना है। आराधना के इन पलों में भी अपने पुरुषावतार जगड़े हुए, आराधना के इन पलों में भी आपके डूब गए उसमें। तो तुम्हारे अंदर के इस प्रकार के जो बीज है, जो पेड़ है, जो फल लगेंगे वो यही के यही अंत हो जाएंगे। यदि आराधना संपन्न हो गई तो सुयसा आरायण मंत्री जीव किम जनई। उत्तराध्ययन सूत्र के समय तो पराक्रम के अध्याय में जिज्ञासा हुई, दो जिज्ञासा हुई, संचायन मंत्री जी ने किम जनई और श्री आरायण मंत्री जी ने किम जनई, दोनों का उत्तर दिया कि जो स्वाध्याय करते हैं वे ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय करते हैं और जो स्वरूप की आराधना करते हैं उनका अज्ञान समाप्त हो जाता है और उनको कभी क्लेश नहीं होता है। स्वाध्याय करने वाले को क्लेश नहीं होगा ऐसा नहीं कहा गया। आराधना करने वाले

ज्ञानावण्य कर्म का क्षय हुआ था। कौन से कर्म का? इसलिए उसके पास ज्ञान बहुत था लेकिन अज्ञान नहीं गया था। किसको अज्ञान कहते हैं? जिससे देव गुरु धर्म और संयम की पहचान हो जाए वो ज्ञान है। जिससे पदार्थ का बोध हो जाए वो केवल ज्ञानावण्य कर्म के क्षय से होने वाला ज्ञान है, इन्फॉर्मेशन। अर्जुन माने ने दीक्षा ली, आगे आएगा, स्वाध्याय नहीं किया, स्वाध्याय नहीं किया। कोई आचार्य उस तरह की आराधना नहीं करी। 11 अंक का तो सवाल ही नहीं, केवल अष्ट प्रवचन माता की आराधना करी। उस आराधना से मोक्ष में चला गया, क्लेश नहीं हुआ उसको। और जमाल कोशाल को क्लेश भी हुआ, दूसरों के भी उसने क्लेश किया। आराधना होती श्रद्धा से, भक्ति से, दिल से, अवभाव से, स्वाध्याय होता है दिमाग से। आराधना से क्लेश हो ही नहीं सकता है। महाराष्ट्र में हो, महाराष्ट्र का जन्म है, इसलिए आराम से कह सकता हूं संत ज्ञानेश्वर ने गीता की आराधना करी। संत ज्ञानेश्वर ने गीता की आराधना करी। लोकमान्य तिलक ने गीता का स्वाध्याय किया। ये आराधना और ये स्वाध्याय देव गुरु की कृपा है कि पिछले 20 सालों से ये आराधना का अमृत पान करने का आनंद आता है। स्वाध्याय में तो बहुत प्रोटोकॉल होते हैं। स्वाध्याय मीन्स प्रोटोकॉल ही प्रोटोकॉल। आप सोचो एक छोटा सा प्रोटोकॉल मैंने दिया, 8:30 के पहले जो अंदर आएंगे वो अंदर, जो नहीं आएंगे वो बाहर। इतना छोटा सा प्रोटोकॉल दिया, कितनी वो श्रद्धा से बैठ रहे थे। लेकिन इधर दृष्टियों में भी, इधर भी प्रोटोकॉल ब्लैक मार्केट को जन्म देते हैं। किसको जन्म देते हैं? आराधना अंधियारे को उजाला बना देती है। प्रबंधक सिंह जी ने आराधना करा दी, बोले ले लो उनको अंदर, थे खुश वे खुश, ये आराधना है। और प्रोटोकॉल तो इतना है शास्त्र स्वाध्याय का, बिजली चमकी स्वाध्याय बंद, बादल गरजा स्वाध्याय बंद, किरी राजा री मौत हो गई स्वाध्याय बंद, कटे कहीं दिखियो स्वाध्याय बंद, कटे आषाढ़ी पूर्णिमा आ गई स्वाध्याय बंद, कटे अश्विनी पूर्णिमा आ गई स्वाध्याय बंद, कटे फाल्गुनी पूर्णिमा आ गई स्वाध्याय बंद, कटे तारो टूटियो स्वाध्याय। अब कौन कहे आपको कि तारे टूटते ही रहते हैं? तारे टूटते ही रहते हैं। अरे एक मुझे समझ में नहीं आया, तारा टूटे तो भी गाने दे सकते हैं, बादल गरजे तो भी झगड़ सकते हैं। झगड़ने में कोई अस्वाध्याय नहीं है, है ना? बराबर है। कोई झगड़ने का प्रोटोकॉल, कोई गाली देने का

झूठों का किस समय झूठ नहीं बोलना, झूठ कभी भी बोल सकते हैं। सच बोलने का प्रोटोकॉल, नहीं सच इस समय बोल सकता, उस समय नहीं बोल सकता। मूवी कभी भी देख सकता है, फालतू की किताब कभी भी पढ़ सकता है, फालतू की किताब कभी भी पढ़ सकता है। भगवान की वाणी नहीं, अखबार नहीं पढ़नी, वो देवता ही नहीं थे, पागल कर देगा। देवता ने उत्तर से कम बचे, आराधना क्या है आराधना? और आपको बस चलते चलते जानकारी दे रहा हूं, महाराष्ट्र के बाहर पहला ही चतुर्मास जोधपुर में, और पहले जोधपुर के चतुर्मास में निर्वाण कल्याण के समय खगरा सूर्य ग्रहण। कौन सा सूर्य ग्रहण? खगरा सूर्य ग्रहण। और खगरा सूर्य ग्रहण के 72 घंटे की अश्रद्धा में, और कहा जोधपुर में, और पहली बार, और पड़ोस में तपस्या चंपल जी मानसव और बोसु प्रकाश मुझे मानसव जो मानसा, और प्रवर्तक से जी का सानिध्य। अपने को क्या, अपन छोटे थे, कोई आता तो वो झेलते, अपने को अपन तो शुरू करी उतना दिन की आराधना। और जोधपुर के साथ क्या गणित है पता नहीं, जब भी जोधपुर चौमासा करता हूं ग्रहण आता ही आता है। आप हंस रहे हो, अभी 2022 का चौमासा किया, उस समय भी ग्रहण आ गया दिवाली को, और उस समय तो इधर प्रकाशमणि जी, इधर हिराचंद जी महाराज, आचार्य श्री हिराचंद जी महाराज, उन बीच में मैं, और बिल्कुल ऐसी मस्ती से आराधना करी। कोई आई ने मैंने पूछो उसको नहीं, मरसा असज्जा है, कोई पूछे को नहीं आई ने, और सगड़ा आया मस्ती बैठ गई। और यूं भी मेरे साथ कोई आकर के पूछता ही नहीं, मालूम नहीं क्या है। तेने पूछो को नहीं, कभी कभी बाबू से प्रयास करे पूछो उनको, है ना। इन दिनों में तो उसने भी पूछना छोड़ दिया कि देख लिया, 2-3 बार पूछ करके कोई प्रभु ऋषि में फर्क तो पड़ता नहीं। लेकिन ये आराधना है, क्या है तो आओ आराधना करेंगे, मस्ती से करेंगे, बड़ी अच्छी तरह से करेंगे। से सुनसान और देवकी, सुनसान ही पिछले जन्म में ऐसे कुछ उद्योग करे और यदि मुझसे पूछो क्या उद्योग किया तो मैं एक ही उद्योग बताऊंगा आपको, कि पिछले जन्म उसने अबॉर्शन किया। और अबॉर्शन का यह परिणाम हुआ कि जन्म में उसको अबॉर्शन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, पिछले जन्म का उसके अंदर जो प्रोग्राम था ज्योतिष ने कहा, उसको निमित्तज्ञ ने कहा, तेरे गर्भ में है तब तक बच्चे जिंदा रहेंगे, तेरे गर्भ में है तब तक बच्चे जिंदा रहेंगे, जैसा ही तू उनको जन्म देने जाएंगे वो मरे हुए ही जन्मेंगे। ये बचपन में भविष्यवाणी है, गर्भ में है तब तक जिंदा है, तो होगी प्रसूति होगी। सुनसा के अभी और कुछ जन्मदिनों के बाद, पास एक 10-15 सालों के बाद ये भविष्यवाणी सुन करके ये सब खुश हो जाएंगे। अभी इंटरनेशनल एक मूवमेंट शुरू हो चुकी है, नो मदरहुड, नो मदरहुड,

0: बच्चे को जन्म ही नहीं देना। और साइंस ने और व्यवस्था कर रहा है, साइंस जन्म देने की जरूरत ही नहीं है, इंडस्ट्री से ले आना जैसा चाहिए वैसा। जैसे तुम आज गाड़ी देकर के लाते हो ना, वैसा साइंस ये प्रयोग कर रहा है कि बच्चे भी इंडस्ट्रीज में तैयार हो जाए और कस्टमर को जैसा चाहिए वैसा माल देने प्रोडक्ट है। पता नहीं लेकिन सुनसा ने भविष्यवाणी सुनी। यदि ऐसी भविष्यवाणी आपके पास कोई अशुभ की भविष्यवाणी आ जाए, अशुभ की भविष्यवाणी आ जाए तो आप धर्म ध्यान शुरू करोगे कि अर्थ ध्यान में जाओगे, कई मरा नसीब। किसी जगुल में कई महिला भी मारो, ये सवाल जहां आते हैं वहां अर्थ ध्यान शुरू होता है। धर्म ध्यान का सिंपल सूत्र है, इसका समाधान मैं कैसे खोजता हूं, प्रॉब्लम क्यों आया, नो चिंतन, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या हो सकता है। यांत्रिक सूत्र की बात कर रहा हूं मैं आपके साथ। समस्या का समाधान जो खोजता है वो धर्म ध्यान करता है, और समस्या का जो पोस्टमार्टम करता है वो अर्थ ध्यान करता है, वो रौद्र ध्यान करता है। जिन शासन तुमसे इतनी ही उम्मीद करता है कि जब भी जीवन में समस्या आए समाधान खोजो, जितनी बड़ी समस्या उतने तुम बड़े, जितनी छोटी समस्या उतने तुम छोटे। बोलो भले वाक्य, जितनी छोटी समस्या लोअर केजी नर्सरी के बच्चे का सिलेबस और एमए का सिलेबस, कौन सा सिलेबस चाहिए आपको, नर्सरी का बोलो तो सही, नहीं ना, कौन सा, एमए का, बाईएस का, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का। तो जितना बिग सिलेबस होगा, जितना कॉम्प्लिकेटेड सिलेबस होगा, उतनी तुम्हारी क्वालिटी वो निखर करके आएगी। तो जितना कमजोर सिलेबस होगा उतने तुम निखर के आओगे। प्रॉब्लम इज सिलेबस, वो आवाज गूंजते रहे तक बड़े मतलब मागो वाढवला तो इथं काय करतो, तिथांचा आवाज इथं माझा काय होणार, त्यांना जवळ कर म्हणतात। प्रॉब्लेम इज सिलेबस, बोलो प्रॉब्लेम इज, प्रॉब्लेम इज, और सिलेबस स्टडी के लिए होता है, सिलेबस स्टडी का होता है, और सिलेबस की स्टडी तुमने बराबर करी कि मेरिट में पास हो जाते हो, और सिलेबस को लेकर के तुमने माथे को हाथ लगाया कि फेलियर हो जाते हो। सुलसा के पास सिलेबस आया और सुलसा ने समाधान खोजना शुरू किया। हरिणी गमेशी देवता, हरिणी गमेशी देवता, निगमेशी देवता, एक देवता है देवलोक का, इसका संबंध वात्सल्य के साथ है। और उसने उस हरिणी गमेशिनी देवता की आराधना शुरू करी, रामेश्वर 8 दिवस मला न सांगता आवाज चांगला दे, म्हणजे मला थोडं मस्ती मध्ये बोलता येईल, तुझ्या बरोबर कुस्ती करता करता बोलणं थोडं भारी जात, म्हणून मी तुला सांगितलं की तू ते स्पीकर चेंज कर, उसने भक्ति शुरू करी, किसी ज्योतिषी के पास किसी ब्राह्मण से नहीं कराई, उसने स्वयं ने भक्ति शुरू करी। अंतगढ़ में उस भक्ति का पूरा पाठ गया, कोई स्तोत्र नहीं, कोई बलि नहीं, केवल सुबह उठने के बाद उसने एक हरिणगमिष देवता की मिट्टी की या किसी की प्रतिमा बनाई, रोज जाकर के उसको प्रदक्षिणा करने गीले कपड़ों से, उल्ल सगड़ा है गीले कपड़ों से। जब तक उसकी आराधना पूरी नहीं हो तब तक वो मुंह में पानी भी नहीं लेती। देवता नहीं आया, देवता आने का कोई जिक्र भी नहीं है, लेकिन हरिणगमिषी ने उस आराधना को स्वीकार किया और आराधना को स्वीकार करके आगे साइंस शुरू हो रहा है। हरिणगमिषी देवता ने क्या किया, उसके मरे हुए बच्चे को जिंदा किया? कोई जिंदा कर सकता है? नहीं। उसने क्या काम किया, उसने देखा और कौन ऐसी नारी है जिसके साथ मैं इसकी दोस्ती करा सकता, जिसके साथ मैं इसका एग्रीमेंट इनके बिना जाने करा सकता। एग्रीमेंट कराना है लेकिन इनको पता नहीं होना चाहिए। और उसको नजर आई देवकी, कौन नजर आई? देवकी। देवकी को आप जानते हो, अति मुक्तक अनगार, जो उसका भाई था। गोत्री के लिए आंगन में आया और कंस की रानी जीवेशा, उसने देवर को आते हुए देखा, देवर को आते हुए देखा और मजाक शुरू करी। कौन आ रहा था? देवर आ रहा था कि संत आ रहा था? कौन आ रहा था? संत आ रहा था। उसने किसको देखा? देवर को देखा। जो प्रेजेंट में पास्ट को देखते हैं वे सब जीव ऐसा और कौन से होते हैं। लेट मी रिपीट, जो प्रेजेंट में पास्ट देखते हैं वे सब कंस और जो ईशा होते हैं। जो प्रेजेंट को टैकल नहीं करते और पास्ट के आधार पर बिहेव करते हैं, मैक्सिमम तुम्हारे जीवन की समस्या का इतना सा कारण है। पास्ट के आधार पर तुम जीते हो और प्रभु कहते हैं भविष्य के आधार पर जीना चाहिए। डिसीजन लेना, तुम डिसीजन लेते हो पास्ट के आधार पर और वही प्रेजेंट पास्ट के जेल में चला जाता है। जिस समय तुम भविष्य के आधार पर डिसीजन लेते हो तो प्रेजेंट को एक आसमान मिलता है। तय करो प्रेजेंट को जेल में रखना है कि आसमान में पहुंचाना है। वो जो ईशा ने पास्ट के आधार पर अति मुक्त के साथ मजाक शुरू करी और वो उस समय देवकी के बालों की श्रृंगार कर रही थी, आमंत्रण दिया उसको, कहा घर घर भूखते हो, राजकुल के हो तुम, आओ मस्ती करें। क्या करें? बोलो मस्ती करें। क्या भिखारी जैसे जीता है? अतिमुक्त ने सुना संयम रखा और संयम टूट गया और अतिमुक्त ने कहा किसकी बात करती है तू, जिसकी जिस बात जिस ननन की तू इतना प्यार करती है, जिस ननन से तू इतना प्यार करती है, जिस ननन से तू इतना प्यार करती है इसी के कुख से वो जन्मेगा, जो तुझे रुलाएगा। हक्का पक्का सन्नाटा रात मुक्त करेगा, इसकी कुख से जन्मेगा जो कोस को मारेगा। ये खबर सुनने के बाद तो एक खबर सुनी सुलसा ने, एक खबर सुनी कंस ने, और सुलसा ने सुना तो समाधान की यात्रा शुरू करी, और कंस ने सुना तो समस्या की यात्रा शुरू करी। ये अंतगढ़ सूत्र तुम्हारे पास पहुंच रहा है। सुलसा ने भी सुना और उसने भक्ति शुरू करी, कंस ने सुना और जुलूम शुरू किया, सुलसा ने सुना उपासना शुरू करी, और इसने सुना यातना शुरू करी। उसी समय देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया। न रहेगा बास न बचेगी बास होनी। वो तो देवकी का पति श्री कृष्ण का पिता वसुदेव, वासुदेव श्री कृष्ण वासुदेव के पिता वसुदेव, उसने उसको समझाया क्यों भगिनी हत्या का कलंक लगाता है। ये थोड़ी हत्या नहीं है, इसके कुख से जन्मने वाला हत्यारा होगा तेरा। मैं तुझे वचन देता हूं कि जन्मते ही इसके कुख से जन्मने वाले को तुझे सौंपूंगा। हत्यारे को मारना, इसको क्यों मारता है? अपराधी को सजा देना, निरापराधी को क्यों सजा देता है? और फिर अब जानते हो कि उसने वसुदेव और देवकी को जेल में रखा। जिनके पास भी सत्ता होती है ना, उनको जेल में रखने मजा आती, और फिर उनको पता नहीं चलता कि मैं जेल में रखूंगा तो मुझे भी, हेलो बोलो तो सही, मैं इसको जेल दूंगा, शायद ही जेल से बाहर निकल जाएगा, लेकिन दूसरों को जेल देने वाले को जो जेल मिलेगी वो जेल से होकर भी बाहर नहीं आ सकेगा। औरंगजेब ने सोचा छत्रपति को जेल में रखता, रख पाया नहीं। कौन से ने भी सोचा, और हरि ने गमेश देवता ने भी सोचा, एक कंस के हाथों से मरने वाले हैं, कंस के हाथों से मरने वाले हैं, वो मरने वाले को जन्म देने वाले हैं। मुझे अवसर मिला है कि कंस के हाथ में मुर्दों को ही पहुंचाओ, जिंदों को पहुंचाओ नहीं। और उसने साइंस किया, सबसे पहले काम क्या किया उसने, दोनों का ऋतुकाल, देवकी का और सुलसा का ऋतुकाल एक कर दिया। प्रिपरेशन कैसे कहते हैं, पूर्व तैयारी किसको कहते हैं, कहां से पूर्व तैयारी करता है, क्योंकि ऋतुकाल एक हो गया, ये साइंस है। ऋतुकाल के आधार पर ही तय होता है कि गर्भधारण कब होगा। डिटेल मुझे पता नहीं, एजीएस का मैं मास्टर हूं, और ऋतुकाल दोनों को एक कर दिया तो दोनों की गर्भधारणा एक हो गई। अगला काम वो केवल हरिणी गमेश ही कर सकता था, वो किसी इंसान के बस का नहीं था। इतना फास्ट, इतनी तेजी से, इतनी गति से केवल देवता ही कर सकते हैं। जो देवता कर सकते वो कर सकते हैं, जो देवता नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते। देवता तुम्हारी दुकान नहीं चला सकते। देवता क्या कर सकते हैं, अगम प्ले दे। देवता क्या नहीं कर सकते ये भी अगम प्ले दे। दोनों प्ले दे। और हिरण्यगर्भेशी देवता ने जब गर्भ का अनेक हो गया, ऋतु का अनेक हो गया, तो प्रसव तो एक समय में होगा ही। ये दोनों का क्या है, कहां से शुरुआत करनी चाहिए? ऋतुकाल से। ऋतुकाल से चौमासा लगने के बाद, नगर आने के बाद जगह खोजते तो होता क्या, वो ऋतुकाल में जगह खोजेगी, इसलिए काम हो गया। जन्मोत्सव के लिए भी जगह उस समय खोज गई, हो गया। मैं आई ला जरा देखा ना कितना लोग आवे, पीछे विचार कराना, तो विचार करता चली जो पीछे है ना। प्रेजेंट में भविष्य का डिसीजन लेकर के जो कदम उठाते हैं उनके कदमों में दम होता है। अरे वे दमदार होते हैं जो प्रेजेंट को पास्ट के वीडियो से जकड़ लेते हैं, वे स्वयं ही जकड़ जाते हैं। प्रसव साथ में हुआ, हिरण्यगर्भेशी ने केवल इतना काम किया, सुसा का उठाया, देवकी के पास पहुंचाया, देवकी का उठाया, सुसा के पास पहुंचाया। ना देवकी को पता ना सुसा को पता। इसलिए लोग कहते हैं कभी कभी अज्ञान में सुख होता है। देखिए ना, कई समय दिक्कत ज्यादा बोला नहीं, कभी कभी हमें तो हमेशा से अज्ञान में सुख रहे, है ना। इसलिए मैं सारे शब्द बताऊ, कभी कभी, हमेशा नहीं। हमेशा तो ज्ञान में सुख है, हमेशा कभी कभी अज्ञान में भी सुख रहता है। इसलिए रहता है कि सत्य को पचाने की अपनी ताकत नहीं होती है, तो अज्ञान में सुख होता है। अज्ञान में सुख कब होता है, जब सत्य को पचाने की ताकत हो, तो अज्ञान में कभी सुख होता ही नहीं, ज्ञान में सुख होता है। देख लो अपना पचान की ताकत है कि नहीं। वो अज्ञान था कंस का, देवकी का, कंस का, वसुदेव का, सुलसा का, ना गाथापति का, सभी का अज्ञान था। उस अज्ञान में बड़े मस्त थे, जन्म हुए बच्चों को भी अज्ञान था कि कौन हमारी मां, कौन हमारी मां। और वसुदेव, कंस, देवकी एक ही गलत फहमी में कि मेरे डर से बोलो आगे के थे भी हमारा डर से नहीं ना, खुश हो गया, खुश हो गया। अरे बच्चे सुरसा के वहां पर बड़े होते रहे, बदिल गए ना गाता पते के अंदर नहीं, बड़े हो गए, शादी हो गई, शेव की शादी हो गई। और शादी होने के बाद अरिष्टिनी ने पधारे, और अरिष्टिनी में पधारे तो छीने दीक्षा ले ली एक साथ एक दिन। हेलो, ताकि थोड़ी बात कर रही हो, उनकी कर रही हो, छीने एक साथ दीक्षा ले। मैंने आपसे पाठ इसलिए बुलवाया था कि ये पाठ केवल अंतगढ़ सूत्र में मिलेगा आपको, बाकी सब पाठ इच्छा में न बनते। बाकी सब पाठ क्या है? ये पाठ क्या है? इच्छा में न बनते। इच्छा में का मतलब होता कि मैं करता हूं मैं करूंगा, और इच्छा में का मीनिंग होता है हम करेंगे। वी आर नॉट आई एम। पुरुषन पर्व वी आर नो आई एम। दीक्षा ने उसी दिन परमात्मा से निवेदन किया, रामेश्वर मजा नहीं लगा, उसी दिन तय किया कि हम बेले बेले पालना करेंगे। क्या करेंगे? बेले बेले पालना करेंगे, साथ में करेंगे, साथ में दीक्षा ली, साथ में तपस्या करेंगे, साथ में चलेंगे, गोत्री को भी साथ में जाएंगे। और विहार करते करते द्वारिका नगरी आए। बेले के पारने के दिन अरिष्ट नेमि के बांग दे प्रार्थना करी। चार या पारना ने मां मां का तीन ग्रुप कराना, छह है पंछी के, छह एक साथ नहीं जाएंगे, दो दो एक एक साथ जाएंगे, ग्रुप बना करके जाएंगे। यानी कि ग्रुप बनाने आओ, जिरा साथ एक ग्रुप बनाए उरा साथ आओ। हेलो आया है लेकिन पूरा नहीं आया है। आया वो तो ध्यान में आ रही हो मारो अनुरा मत, तो पक्को भी ध्यान में आ गए। प्रवीण दृष्टि तू जिन्हें नहीं ला सके ये नहीं ला सके, मैंने लाऊ को ताकत किरा में पता का बेचे अरे थाने उठाओ लेने आया तो थी आठो तो आठे लाओ मैंने वे थाने तिहर से लेने आया। हेलो लायो नहीं लाए पियर से ससुराल में लाए कड़ी लाए बोलो तो सही थोड़ी देर। पियर से ससुराल में लायो कि थाने पियर में तो उत्तराधिकारी नहीं बन सकता था, ससुराल में थे उत्तराधिकारी बनोगा। वे थाने पियर से ससुराल में लायो थे कम से कम यानी उनका पियर से आठे तो लाओ कट भी तुझे करना हो क्यों थाने और परमानेंट नहीं विचार उसी तो परमानेंट लाइफ है। हाँ बाबू सेठ वो पीछे कौन है मालूम है ना, प्रवीण ऋषि की तरफ नहीं देखना। प्रवीण ऋषि में नहीं सामर्थ्य 100% नहीं, उनमें और अपने पास सारा पावर उनका ही है। अपने पावर की कोई चर्चा करने की जरूरत है ही नहीं, और उनकी पावर की चर्चा तुम कर नहीं सकते हो, कर सकते हो नहीं बस ठीक है पहले आओ पीछे। कोशिश कर दिया बढ़िया धन्यवाद। कम से कम शुभ वचन तो बोलियो तो बोलन दे सना धारा मुंह में घी सब कर ग्रुप में गोत्र जाएंगे और चले चले। क्या रिश्तों का आकर्षण होता है, क्या वात्सल्य का आकर्षण होता है। रिश्ते बिन बुलाए बुलाते हैं। मंजिल जिंदगी में उनको ही मिली जिनके पास रिश्तों के रास्ते थे। मंजिल जिंदगी में उन्हीं को मिली जिनके पास रिश्तों के रास्ते थे। रास्ते पर चल करके वे भटक गए जिनके पास रिश्ते नहीं थे। ना देवकी को पता ना बेटों को पता, तीनों ने तय किया कि तुम इस दिशा में जाओ मैं इस दिशा में जाता हूं, एक ही दिशा में तीन दिशा में चले। एक सेंटर में आकर के तय किया कि एक गली में नहीं जाएंगे क्योंकि एक घर में नहीं जाना है, अलग अलग गली में जाएंगे तो अलग अलग घर में पहुंचेंगे। कर ले तो प्लानिंग जितनी करनी उतनी, कर ले तो प्लानिंग जितनी करनी उतनी, सबसे सबसे गहरी प्लानिंग रिश्तों की होती है। कर्मों की प्लानिंग भी उसके सामने फेल होती है। सबसे सबसे गजब की लीला किसी की है तो रिश्तों की, यह अंतगढ़ सूत्र आपको कह रहा है। चले रास्ते पर अलग अलग, तय किया तो का अलग अलग गली में जाएंगे, अलग अलग घरों में जाएंगे, लेकिन पहुंचे छे के छे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक ही घर में। बुद्धि के बल पर कि रिश्ते के बल पर तुम यहां क्यों आए? दिमाग से कल बाबू सेठ ने जानकारी दी आपको कि बाहर गांव से 400 लोग परिश्रम परों की आराधना के लिए 8 दिन के लिए यात्रा है, चेन्नई, बेंगलोर, पुणे, नासिक, औरंगाबाद, संभाजीनगर, वहां चतुर्मास नहीं है, वहां चतुर्मास है रिश्ता है कि गुरुदेव के साथ रिश्ता है, नहीं तो समझ लो प्रवीण ऋषि साथ है, क्या साथ रिश्ता है। मैं हमेशा कहता हूं, हमेशा कहता हूं, प्रवीण ऋषि के पीछे का एक नाम निकल जाएगा आचार्य भगवान के सुशिष्य, तो प्रवीण ऋषि औकात का ही मालूम पड़ जाएगा ये रिश्ते। खुश हो जाती है, आगे जाती है, 7-8 कदम प्रदक्षिणा करती है, प्रदक्षिणा करती है, ये विधि है जो आज भी दिगंबरों में सुरक्षित है। दिगंबर संत जब आहार के लिए आते हैं तो आहार बहराने के पहले उनको आज भी प्रदक्षिणा करते हैं। ये विधि सुरक्षित है, आज उनके पास प्रदक्षिणा करेगी। भक्त घर जहां आहार रखा वहां का वहां लेकर गई, वहां गई थाली में मोदक कैसे, सिंह कैसे मोदक भरे, बेराए, बेराने के पहले खुश, बेराते समय खुश, बेराने के बाद खुश, ये तीन समय में तुम खुश रह जाओ, खुशी तुम्हारा कभी दामन नहीं छोड़ेगी। या आने के पहले खुश, यहां रहो तब खुश, यहां से जाते समय भी खुश खुश, तो तुम्हारी खुशी परमानेंट हो जाएगी। पहले गए दूसरे आए, उसी भक्ति से बना है, पूछा नहीं उनको मैं क्यों बार बार इस संप्रदाय के विषय बोलता हूं आपको, मनमाड़ थे हम। 200 प्रकाश मुझे मना साहब से वहां मुलाकात हुई और उन्होंने घोषणा करी कि आज का बखान प्रवीण ऋषि जी करेंगे, और बखान कहां पर, जहां पर वो बिराजे वहां पर। एक ही दिन हम मनमाड़ा पहुंचे थे, कल्पना करिए, जो बहुश्रुत होते हैं उनका सोच क्या होता है, जो अल्पश्रुत होते हैं उनकी चर्चा क्या होती है। उन्होंने घोषणा करी संघ के सामने कि आज का प्रवचन प्रवीण ऋषि करेगा, और मैंने वहां जाकर के प्रवचन किया, और प्रवचन के बाद मैंने मेरा विवाह वही डिक्लेयर कर दिया। मैं प्रवचन करके उनके पास पहुंचा तो मैंने कल का विवाह कैसे कितने कर दिया, कल का भी व्याख्यान तेरा होगा, मैंने कहा नहीं बस हम विहार करके बाहर के एरिया में पहुंचे। मेरा उपास था, एकांत चल रहे थे, तीर्थ शशि गोचे गए, घर से गोचे लेकर के आ गए। उसके बाद प्रकाश मंजी के संत उस घर को से बनाए, और सामने जो बहन खड़ी थी उसने उनको जवाब दिया कि हमारा घर परसा गया है। इस संप्रदाय क्या सिखाता है? संत ने कहा कि हमारे संघाड़े ने नहीं परसा है, वो अलग है, हमको कलपता है। बोले तुमको कलपता है, मुझे नहीं कलपता है। ये संप्रदाय सिखाता है। बाहर दान जैसे महान पुण्य से लोगों को वंचित करता है, संत वंदन जैसे महान धर्म आराधना से लोगों को वंचित करता है। गुरुदेव का चेहरा देख करके लोगों के मन में विकार जागृत होगा कि भक्ति जागृत होगी, और ऐसे जिस चेहरे को देखकर भक्ति जागृत होती है, ये अल्पश्रुत वाले वो चित्र पर कपड़ा डाल देते कि नहीं, ये चित्र किसको दिखना नहीं चाहिए। हमारे मन में ही विकार आते हैं, हमारे कल्पता नहीं, हमारे ब्रह्मचर्य के नौवाड़ में बैठता नहीं है। अरे ब्रह्मचर्य के नौवाड़ हमको भी पता है, शासन की मर्यादा हमको भी पता है। किस प्रकार के चित्र हो वहां साधु साधु रह नहीं सकते हैं जहां विकार जागृत होते हैं, जहां वासना के चित्र लगे हैं, जहां उत्तेजना के चित्र लगे हैं, वहां साधु साधु रुक नहीं सकते। किसी योगी का चेहरा देख करके तुम्हारे अंदर योगी विकार जागृत होते होंगे तो जिंदा जवानों को देख करके क्या होता होगा? मैं ऐसा बोलता हूं ना, फिर वो दिमाग साहब इस मत बोला करो, वे कहीं भी बोले साले, मैं बोला नहीं जाने, वे गुरुदेव के चेहरे पर फोटो पर कपड़ा ढकते, मैं चुप बैठ जाऊं, तुम भी चुप बैठ जाओ, चूड़िया भरी होंगे ना चुप बैठेंगे, चुड़िया नहीं भरी। वो कानाफूसी करते हैं, और कानाफूसी वे करते जो कॉन्फ्रेंस ही करते हैं, हम ट्रांसपेरेंट हैं और हम डंके की चोट बात करते हैं। कौन सा चित्र नहीं चलता है? अगम की मर्यादा ये कि जहां से विकार जागृत हो। दिन के आहार बेराए और पूछा, क्या देव द्वारिका नगरी में आहार नहीं मिलता है जो एक ही घर में बार बार आ रहे हो? तो उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं, हम एक नहीं, हम दिखते एक है एक ना, नहीं वे अलग थे, हम अलग थे, और पूरी कहानी सुना दी कि हम छह समुदाय है, हम दिखते एक समान है, दीक्षा एक साथ नहीं है, साधना एक साथ कर रहे हैं, सब कुछ एक साथ करते चले गए। और देवकी को याद आ गया आते मुख तक, अरे उसने कहा था कि तू आठ पुत्रों को जन्म देगा, अष्ट पुत्रो भव, अष्ट पुत्रो भव, तू आठ पुत्रों को जन्म दे, तेरे समान दूसरी कोई भारत क्षेत्र में मां नहीं होगी। और मैं देख रही हूं कि ऐसी भी मां है कि छह को इन्होंने जन्म दिया है। और जैसे मन में आया अष्ट नियमी के पास पहुंची, पूछने के लिए पहुंची, लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं हुई। और अरिष्ट नियमी ने भाव को जान करके कहा कि देवकी तेरे मन में ऐसा ऐसा उल्टा पुलटा संतों से बचाना है और इसलिए तो यहां पर आई है, ये सच है क्या? बने हाँ। और फिर तीर्थंकर का वो सत्य उजागर होता है कि जहां से एक नई यात्रा शुरू हो जाती है। तीर्थंकर कहते हैं, अरिष्ट नियमी कहते हैं, देवकी ये तेरे ही जाए, ये तेरे ही जाए हैं, पाए उसने है, जाए तूने है, और जिए ये है, जाए तूने है, पाए उसने है, जिए ये है। दान खिला किसी, फूल खिला किसी डाली पर, फूल खिला किसी डाली पर, फल बना के किसी और डाली पर। देवकी ने पूछा, ऐसे कैसे? तो तीर्थंकर ने पूरी कहानी सुना दी। कहा तो देवकी के मन में दुख था, कहा तो एक दर्द था कि मैंने छह को जन्म दिया और वो मरे गए, और एक खबर मिली कि मेरे छह की छह जिंदा है। खुश होंगी कि नहीं होंगी? हेलो, और खुश हो गई, मस्ती में खुश हो गई और अपने जिंदा बेटों को मिलने के लिए गई। उनको देखा चीजें साधना कर रहे समाधि में है और मां उनको वात्सल्य की नजर से देख रही है। इतना गहरा वात्सल्य के अंतर्गत सूत्र कहता है कि दूध की धार बहने लगी। ये साइंस कहता है जैनाथ का, दूध लाने के लिए जन्म देना जरूरी नहीं होता, वात्सल्य जरूरी होता है। मैं केवल 5 मिनट ले रहा हूं क्योंकि 5 मिनट आपने थोड़ी व्यवस्था में देख ली। बस एक ही बात कह करके रुक रहा हूं, उन 6 बेटों की साधना सिद्ध हो गई जब मां के वात्सल्य की वर्षा उन पर हो गई। उस नजर से जो अमृत उन पर बरसा और खुशी खुशी मां लौट करके आ गई। अगली बात कल देखेंगे, अंतगण सूत्र की यह आराधना आपके लिए, मेरे लिए, पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी बने। जन के जीवित चाहिए मन दुखड़ाए, वह दुखड़ाए, काय दुखड़ाए, कोहाए, बनाए, मायाए, नुआए, सब कन्याए, सब मिछोराए, सब लम्बक बनाए। जो मैं देश यारों को दस कमा सनो, बड़े कमा में निंदा में दरिया में अपानम ओ सरामी। आज का बेला किसी को आज का बेला
1: तेलो अट्ठम भत्तम दिव्यम व्याहरमण अत्ता भगिनम सहसा करणम महोदर सुबस्मायु त्यागरण श्रेय।
0: बेला तेला करने वाले को धन्यवाद। आज का अभ्यास है,
1: आज का
0: अभ्यास
1: व्यास नाम बचकामी दिव्यम व्याहरमण अत्ता भगिनम सहसा करणम।

0: बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। अरे बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं।
1: नमस्कार, मी मोनालिसा बागल, तुम्ही ऐकत आहात रेडिओ नगर 90.4 FM, आवाज तुमचा।